2 मिनट ते रात 8 बजे सुनोगे FM न्यूज हेडलाइंस। आज है बुधवार का दिन और बुधवार की शाम 8:02 ते सुनोगे प्रोग्राम इन्फो टाइम्स। 9 बजे FM न्यूज हेडलाइंस। थोड़ी पसंद दे हिंदी फिल्मी गीत बजनगे रेडियो के उत्ते 9:02 ते प्रोग्राम दिल चाहता है दे राही। रात 10 बजे सुनोगे शामे गजल प्रोग्राम। 10:30 बजे एक प्यार का नगमा है। 11 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा FM 102.7 MHz ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। सवेर दे 6:05 हो रहे ने। आओ सरवन कर दे भक्ति संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

एफ एम मैन 102 शरिया 7 MHz एफ एम रेनबो तुसे सुन रहे हो। सवेरे 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस।

और एक ऐसे तारे दे वांगू चमकण दी कोशिश करनी है ना, जो हमेशा हमेशा ही चमकदा रहिंदा है, और वो तारा जिहड़ा है हमेशा किन्नियां नू मोटिवेट करता है जिंदगी दे विच, हमेशा उस तारे दे वांग चमकण दी, उस तारे दे वांग बनने की कोशिश में क्या करनी चाहिए है। पर इस कॉम्पीटिशन दे विच कभी ये ना भूलो कि तुसी की हो, साडी कैपेबिलिटी की है। कई बार ये होंगे कि असी जो असी कर पाने ना कर सकते हैं ओना भी नहीं कर पा रहे होंगे, और कई बार जिनी साडी सिर्फ लिमिट्स होंदियां ने उस तो वध असी करन दी कोशिश कर बैठते हैं। हाँ, अपनी लिमिट्स तो अगे वधना चाहिए, चंगे कम्मां ते लई अपनी लिमिट्स तो अगे वधना चाहिए, पर कई बार बहुत ज़्यादा असं अपने आप से इन्ना प्रेशर पा लें, अपने दिमाग से इन्नी टेंशन पा लें कि वो चीज़ा फिर गलत होनिया शुरू हो जाए, नैगेटिव होनिया शुरू हो जाए। इसलिए जिंदगी दे विच सानू मौका एको बारी मिलता है जिंदगी नू खूबसूरत जे वधिया तरीके दे नाल जीवन दा, तो मैं क्या उस जिंदगी नू वधिया तरीके दे नाल होर भी जिया जा रहे और उसनू होर भी खूबसूरत बनाया जा। प्रोग्राम चल रहा जी थोड़ी अपनी आशी अंजलि दे नाल, गुड मॉर्निंग जलंधर और स्रोते लिसनर साडे नाल जुड़े हुए ने। और मैं कहा जी अज 20 मई है, 20 तरीक है, वैसे तो बहुत कुछ खास इस तरीक नू हुंदा है और अपने आप दे विच ही हर एक तरीक वखरा कुछ इतिहास लैके चलती हुंदी है अपने नाल। सो 20 मई की जेकर तरीक की गल की जाए तो 20 मई जिहड़ी है भारत दुनिया के इतिहास विच वखरी अहमियत रखती है। आज़ादी दे गर्म दल दे नेता जिहड़े ने लाल बाल पाल, उन्हां दी अहम भूमिका रही है, जिहे दे विच जिहड़े लाल बाल पाल दी तिकड़ी दे विचों एक विपिन चंद्र पाल जी सीगे, उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी है अज दे दिन, और 20 मई 1932 नूं उन्हां दी डैथ होई सी। इस तों इलावा 20 मई 1900 नूं हिंदी जगत दे प्रसिद्ध कवि जिहड़े ने स्मित्रा

जिन्ना हो सके इस मोबाइल एडिक्शन तो जिहड़ा है उस बच्चों नूं बचाया जा सके। पर फिर भी ऑटो कहिंदे ऑटो फिल, इन्हां मैनूं हुण शब्द नहीं याद आ रहा कि इन्हां बच्चों नूं की कहा जावे कि पहलां तो ही इस टैक्नोलॉजी दे नाल भरे हुए बच्चे ने। पर देखो जेकर बच्चे किसी चीज़ का शिकार हो जाण तां मापे जिहड़े ने ना उह तां उहनां दे मापे ने, उहनां नूं किस तरह उस चीज़ दे विचों कढ़णा है इह वी उहनां मापिआं नूं अपने आप ही पता है। सो एक छोटी जी बच्ची जिहड़ी कि शायद मोबाइल एडिक्शन जिहड़ी है वह मोबाइल एडिक्टड हो चुकी सीगी। शुरुआत जिहड़ी है स्क्रीन टाइम इन्ना ज़्यादा वध गया सीगा कि मापे जिहड़े ने परेशान हो गए और मापिआं दे वल्लों अपनी मम्मी दे वल्लों इन्नी ज़्यादा परेशान किए जाण ते बाद इह बच्ची नूं इदां सिर्फ सबक सिखाया जाएगा इह नहीं सी पता। और जिहड़ा मम्मी दे वल्लों सबक सिखाउण दा इह सिलसिला इह सफ़र इन्ना खूबसूरत बन जाएगा शायद इस बच्ची ने भी नहीं सोचिया होएगा। मैं गल कर रही हाँ जी जलंधर दी हरनाज दी, जिसने कि हुण वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिता है 25 सकिंटां दे विच 50 बार हुला हुप घुमाउण दा। इस जिहड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड जिहड़ा इस हरनाज दे वल्लों बनाया गया। दस दिए कि हरनाज मॉडल हाउस दे विच रहण वाली एक छोटी जी कुड़ी है, 8 साल दी कुड़ी है और इस दे वल्लों गोल्ड मैडल या फिर ऐसे एप्रीसीएशन लैटर्स जिहड़े ने ना इस बच्ची दे वल्लों जितते गए ने। और महज 8 साल दी उम्र दे विच थर्ड क्लास दे विच पढ़न वाली हरनाज दे वल्लों रोड दे नाल लटकदिया होया तेज़ हुला हुप घुमाया गया, नवा रिकॉर्ड बनाया गया तो और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच जड़ा है हुन नाम दर्ज करवा लिया गया। और हुन तक हरनाज दे वल्लों सिर्फ हुला हुप ही नहीं बल्कि स्केटिंग दे विच जड़ा है 12 गोल्ड मेडल 18 होर मेडल्स जड़े ने ना वो भी जीते जा चुके ने। और इस चीज़ की शुरुआत कितों हुई है, मैं क्या बच्ची गोल्ड मेडल जीत रही है, इसकी शुरुआत कितों हुई है कि हरनाज जिहड़ी है मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा देखते सी, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा सी, इस तो परेशान हो के उसके मम्मी जिहड़े ने ना गगनदीप कौर स्क्रीन टाइम नूं घट करन दे लई उहनां दे वल्लों स्केट्स जिहड़े ने अपनी कुड़ी नूं थमा दित्ते गए, पर फड़ तू स्केट्स फड़ तू स्केटिंग करिया कर और इस मोबाइल फोन तो थोड़ा जिहा दूर रहा कर। अजिहे दे विच जिहड़ा है हरनाज दे वल्लों 4 साल की उम्र दे विच ही स्केटिंग दे विच ध्यान ऐसा लग्या कि जिले दे लेवल दे उत्ते जिहड़ा है पहला मैडल जितया गया। 2.5 साल पहला ही परिवार दे वल्लों दसदी है कि वह घूमण जाते हैं किते उत्ते देखने गए कि हुला होप एरिया दे विच किसी प्ले एरिया दे विच हुला होप जिहड़ा है ये प्ले किया जा रहा, कोई प्ले कर रहा सीगा कोई खेड रहा सीगा। अजिहे दे विच हरनाज का भी दिल घूमया उत्थे कई क्यों ना इस हुला हुप नूं इस चक्कर नूं शरीर दे आले दुआले घुमाया जावे। पहली बारी तो बैलेंस नहीं बनया पर हरनाज ने जिहड़ा है इस नूं सिखण दी जिद फड़ ली, जिस तों बाद उसदे कोच जिहड़े ने परमजीत उसदे वल्लों बाकायदा उस नूं ट्रेनिंग दित्ती गई और अज जिहड़ा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच हुला हुप 50 बार हुला हुप घुमाउणे उह वी 25 सकिंटां दे विच एक नवां रिकॉर्ड बन गया। और ये नवा रिकॉर्ड बनिया और दस दिए कि स्कूल दे विच थर्ड क्लास दे विच पढ़न वाली हरनाज है और 10 दिन पहला ही चंडीगढ़ दे विच ये जड़ा कॉम्पीटिशन होया सीगा और उत्थे रोड दे नाल हवा दे विच लटकदिया होया महज 25 सकिंटां दे विच 50 बार हुला हुप घुमाया गया। हुला हुप दे नाल नाल इस तरह दे जड़ा बैलेंस बनाउणा स्पीड नूं देखदिया होया इत्थे जड़ा है इस नूं किस तरह कंट्रोल करना ये सब देख के उत्थों दे जज वी हैरान रह गए सीगे। और ये रिकॉर्ड बनाना कहिंदे बहुत आसान हुंदे है पर इस रिकॉर्ड के पिछे किन्नी हड़तोड़ मेहनत रख लगती है ये या तो वह बच्चे जानते हैं या फिर पेरेंट्स जानते हैं कोच जानते हैं, असी तो देखने वाले सिर्फ बच्चे नूं शाबाशी दे सकते हैं ना, असी बस कह सकते हैं वाह जी वाह वाह जी वाह बच्चे ने क्या कमाल कर दिता, पर उस कमाल के पिछे किन्नी मेहनत किन्नी कड़ी मेहनत उस बच्चे दे वल्लों की गई। रोड दे नाल लटकदिया होया रोज़ाना 2-2 घंटे की प्रैक्टिस करना और कई बारी जिहड़ा है छोटे हत्थां ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਰਨਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਹੁਲਾ ਹੁਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯੋਗਾ ਕਰਨੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਟੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ

यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी।

एफ एम मैन 102.7 MHz, एफ एम रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेर दे 9 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम च इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल विचार चर्चा करनगे। दोने नेता संयुक्त रणनीतिक कार्ज योजना 2025-29 दी समीक्षा भी करनगे। एक राष्ट्र एक चोण की संयुक्त संसदीय कमेटी ने कहा कि लोक सभा और विधानसभा चोणा इकट्ठे करवाने के लिए करवाने के नाल करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। सिविल हवाबाजी बारे डायरेक्टरेट जनरल ने इस साल के शुरू तकनीकी गड़बड़ी मगरों एयर इंडिया के बोइंग 787 जहाज के ईंधन कंट्रोल स्विच की अगरेली जांच के हुक्म दिए ने। पछमी बंगाल सरकार ने औरतों के समाजिक आर्थिक उन्नति लिए 3000 रुपए की महीनावार वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा योजना नू सूचित किया। पंजाब के राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल ਵਿਰਵੇ ਸਿਹਤ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਰੰਗਦਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

जी 10:56, लो जी 10:57 हो चुके ने, यानी कि स्टूडियो की घड़ी दे विच ते रह गया समा 3 मिनट का। तो 3 मिनट दे विच प्रोग्राम गीत बहार का आखिर का गीत तुहाडे रेडियो सैट्स ते, पर तुसी जाना किधरे नहीं क्योंकि इस तो बाद अगला प्रोग्राम जिहड़ा कि तुहाडा सब का फेवरेट वाला शो है पंजाबी तड़का, जल्द आवांगी मैं, पर उस तो पहले ये सुनदे हैं गीत।

है। साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 लिए भारतीय टीम की पहली सूची का ऐलान किया है। अति आईपीएल क्रिकेट विच कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला कोलकाता विच शामी 7:30 मुंबई इंडियंस नाल होगा। इस हुण तक दी एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

आओ बालो बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालो अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਯਮਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1: देखकर तुमको यकीन होता है, देखकर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हसीन होता है।

जब तुम नकाब चेहरे से हटा देती हो, जब तुम नकाब चेहरे से हटा देती हो, कसम से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती हो। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज़, यानी कि हिंदी गीतां दा सफ़र।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकल।

आहिस्ता चल ले जिंदगी, आहिस्ता चल ले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द भी मिटाने बाकी हैं और कुछ फर्ज अभी भी निभाने बाकी हैं। जिंदगी दा कदी कदी सफ़र अजिहा होंदा है कि तुहानू ना कई अजिहियां राहां चुननियां पैंदियां ने, ते कई बार कई अजिहियां राहां तुहानू पसंद होण ते तुहानू उहनां नूं छड्डना भी पैंदा है। ते इह सफ़र कदी हसीन भी हुंदा है ते कदी इह सफ़र जिहड़ा है थोड़ा जिहा उदास भी हो जांदा है। पर FM 102.7 MHz से प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ दा सफ़र बहुत वधिया है।

जी दोस्तों, वेलकम बैक। हाँ जी, खबरों तो बाद प्रोग्राम आपां कंटिन्यू करते हैं। प्रोग्राम का नाम है मिड डे मेलोडीज, 102.7 मेगाहर्ट्स और 103.6 मेगाहर्ट्स से सारे ही लिसनर्स साडे इस प्रोग्राम नूं इंजॉय कर रहे ने। समा भावें बहुत घट है, लेकिन असी थोड़े समय दे विच भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। सो इन्हां गीतां दे नाल नाल तुसीं अपनियां यादां नूं भी तरोताज़ा करो। ते लो जी, अगला गीत है लता मंगेशकर दी आवाज़ दे विच।

मोहित जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम एंजॉयिंग योर हार्ट टचिंग वॉइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राम स्वरूप अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच मैसेज भेजन दे लई। लो जी, एक बड़ी ही खूबसूरत एक कंपोजिशन कह लो, पेशकश कह लो, नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ दे विच, बड़ी पंजाबी दे विच, बड़ा खूबसूरत गीत जिसनों अलग अलग समयां दे विच बहुत अलग अलग सिंगर्स ने गाउन की कोशिश की है, बखूबी उन्होंने भी निभाया, सोहना निभाया, पर नुसरत साहब की आवाज़ दे विच सुन चरखे की मिठी मिठी कूक जिहड़ा गीत है ना।

नहीं, दुखाने के नहीं, दिल को खुश करने के लिए आओ, यानी कि हमें मैसेज भेजो। प्रोग्राम दिला शायर है मैं, और प्रोग्राम को आप इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्त मोहित रुपल के साथ। वैसे बहुत सारे दोस्त ही लिख रहे हैं कि नेचराबाद क्यों आए हो जनाब, मैं रेगुलर ही आ रहा वहाँ, बट शाम को, यानी कि मोस्टली मैं 7 to 11 होंगे वहाँ। तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, इदा एक एक हाजरी भी मंजूर करा करो जनाब। ओके जी, मैसेज आया जी, राज नसराला मेरे को काम कर रहे ने, राजपाली प्याला। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। तो अगे वधदे आ, हुण अगों मैसेज आया साढ़े को, जहान फ्रॉम अमृतसर लिख रहे ने कि आंखें बंद करने से तुम दिखना बंद तो हो जाते हो। आंखें बंद करने से तुम दिखना बंद तो हो जाते हो, लेकिन उन यादों का क्या करूं जिसमें तुम हर पल नजर आते हो। क्या बात है जी, इकबाल सिंह चौहान जी, सोना सोना, बहुत सोना। एक और मैसेज आया, लिखा जी, गुड आफ्टरनून सर, रिटन बाय गगनप्रीत कौर फ्रॉम, अच्छा लिव्स इन टांडा। ठीक है जी, टांडे वाले हो, थोड़ी भी पढ़ लेने हैं। अच्छा, अल्बट्रोज अपना तकल्लस जिहड़ा अपना पेन नेम लिखे उन्होंने, बहुत खूबसूरत। बहुत दिल चाहता है कि कह दूं तुझे, बहुत दिल चाहता है कि कह दे तुझे कि तू बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत दिल चाहता है कि कह दे तुझे कि बहुत अच्छा

लगता है तू मुझे कि रुक जाते हैं ये सोचकर क्या कहेगा वो जो बहुत बहुत चाहता है तुझे। अरे यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा है पर बड़ा सोना लिखा है। मैं सोना नहीं निभा पाया पर तुसी बहुत सोना लिखा। थैंक यू सो मच गगन जी प्रोग्राम दे विच मैसेज भेजन दे लई एंड बहुत सोना लिख दियो। अगे जी एक और मैसेज आया ओ रे रे रे रे लिखा है मोहित सर कैसे हो सर काफी दिन के बाद आए हो सर खैर सब ठीक तो था मेरा फेवरेट आरजे आपका सर जल्दी आया करो। ओके जी लिखा है कि माधुरी करके जो खाना खिलाया है वो बाप है अच्छा मजदूरी करके जो खाना खिलाता है वो बाप है दुनिया की बलाओं से जो बचाता है वो बाप है कि खाना बनाकर खिलाती है वह मन मेरी रोजी कमा करके जो लाता है वो बाप है अच्छा रोज की जो मजदूरी करके लाता है वो बाप है बहुत सोना ए दोस्तों।

मोहित सर, कैसे हो सर? काफी दिन के बाद आए हो सर। खैर, सब ठीक तो था? मेरा फेवरेट आरजे आपका सर, जल्दी आया करो। ओके जी, लिखा कि माधुरी करके जो खाना खिलाया है वो बाप है। अच्छा, मजदूरी, सॉरी, मजदूरी करके जो खाना खिलाता है वो बाप है। दुनिया की बलाओं से जो बचाता है वो बाप है। कि खाना बनाकर खिलाती है वह, खाना बनाकर खिलाती है वह, मन मेरी रोजी कमा करके जो लाता है वो बाप है। अच्छा, रोज की जो मजदूरी करके लाता है वो बाप है। बहुत सोना ये दोस्तों, तुसी इदा सोना लिख दे हो। छोटी जी बस गुजारिश है, जदों आप लिख दे हो ना, खास करके टाइपिंग दे विच थोड़ा जिहा कॉमा यूज कर लिया करो, क्योंकि वो कट्ठा लाइन तुसी जदों भेज दिंदे आ ते सानू भी थोड़ा मुश्किल जा हो जांदा। हुण जिहड़ी तुसी फोटो भेजी है उहदे विच बकायदा कॉमा, फुल स्टॉप, डंडी सब कुछ लगा है, जिवें तुसी बड़ा सोहणा भेजिया है। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो और गहरा होता जाता है। प्यार में मिलना जरूरी नहीं, कभी कभी साथ देना ही काफी होता है। प्यार पाने की चाहत मत रखो, प्यार बनो, प्यार अपने आप मिलेगा। क्या बात है! मैं कहना गूगल ते सर्च किया होना इन्हों ने, प्यार ते जो सामने आ गया चक के सानू भेज दिता है। पिछले वाले ने मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान और खुर्द जिला मलेरकोटला तो भेज रहे ने। क्या बात है! पर जो तुसी आप लिखे हो सोहना लिखा है, मैं चाहवागा कि तुसी होर इदा ही लिखते रहो। बस कोमाज जिहड़े ने वो थोड़ा जा सही तरह यूज करते रहो। ठीक है जी, चलो जी, एक हुण गीत का समा हो गया। गीत मैं कढ बैठा, हाँ कढता मैं। चलो आओ इंजॉय करते हैं।

हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसें रुकते हम अपनी सांसें छोड़ देंगे। हाय हाय हाय हाय। और जनाब जितनी मर्जी गर्मी हो छत के ऊपर, और गर्मी कम करने के लिए हम छत पे पानी रोड़ देंगे। ठोको। ओके जी, जस्ट जस्ट जस्ट जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। जनाब मैं अचानक तां इदां गर्मी दी गल करदी क्योंकि वाकई गर्मी बड़ी है यार। रखियो सारे जाने अपना। एक मैसेज आया लिखे अर्जुन सिंह पिंड माले वाला, पहला प्यार सी ओ मेरा सिर्फ याद बन के रह गई, पहला प्यार सी ओ मेरा सिर्फ याद बन के रह गई, दिल पर आउंदा अज याद आवे जदों उस मर जाने दी। क्या बात है, दो ही लाइनां लिखियां पर बड़ियां सोहणियां लिखियां ने अर्जन सिंह जी। अर्जन बेली ने, लो जी मैं सारी मैसेज पढ़ देते निश्चित। लो जी आपां वैसे एक एक पढ़ना हुंदा होणा, चलो आपां फ्लो फ्लो च ज़्यादा पढ़ते ने। जिहड़े सुन रहे ने ते एक वो तो मैसेज भेजण ही, जिन्हां दा पहलां भी आ चुक्या वो दोबारा भी भेज सकते ने, कोई चक्कर नहीं। नंबर तुहानूं पता ही है 9855101027। थोड़ी लगी लॉटरी तो ही दूजी बार भी मैसेज भेजो अज, ठीक है। जिन्हां जिन्हां ने अपना होर भी लिखा मटीरियल होर भी भेज सकते हो। आज हम पढ़ेंगे क्योंकि आज हमारा जो दिल जो है वो चाहता है कि और भी ऐसे ऐसे खूबसूरत मैसेजेस जो हैं वो शायरी जो हैं वो पढ़ी जाए। और एक खूबसूरत गाना रेखा भारद्वाज की आवाज़ में प्ले कर रहा हूँ आप सभी के लिए।

जी हाँ दोस्तों, इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम आज दिल। आज शायर है अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। ते लो जी, मैं सिंपली इन्नी गल कही कि मैनू पुराने दोस्त द्वारा फिर मैसेज भेज दो, फिर सब दे मैसेज ने जिहड़े वो आ चुके ने। ओके जी, अगला मैसेज है जी, आर जी मोहित रुबल सर जी नमस्कार जी। इश्क भी तेरा इंतजार भी तेरा, इश्क भी तेरा इंतजार भी तेरा, दिल ने हर सांस में नाम लिखा तेरा, कि रातां जाग जाग कटदियां ने सजन, रातां जाग जाग कटदियां ने सजन, पर सुपनियां विच रोज आ जांदा चेहरा तेरा। क्या बात वह किरण रूला जी, छा गया आप छा गए। आगे एक होर मैसेज आ गया जी कि वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था।

हर चीज़ एक्सप्लेन करता था। वैसे अजकल दे शायर जिहड़े हुंदे ना, जिहड़े पोइट्री लिखदे ने, उहनां दी महफिल दे विच मैं गया जिहनां नूं ओपन माइक कहा जांदा है, ते जिहड़े पुराने स्टाइल दे जिहड़े कवि ने, उहनां दा कवितावां पढ़न दा अंदाज़ जिहड़ा वक्खरा है। जिहड़े अजकल दे न्यू जनरेशन वाले पढ़दे ने, उह थोड़ा वक्खरे ढंग नाल पढ़दे ने। सो लिखी भी थोड़ी नवें तरीके दे नाल है, तो मैं थोड़ा उस नवें तरीके नाल पढ़न दी कोशिश कर लगा। जी, वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, हर चीज़ एक्सप्लेन करता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी बात समझा देगा तो सब ठीक हो जाएगा, कि अगर वो अपनी बात समझा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, उन्हें बस बोलना होता है, जज करना होता है। और उसी दिन उसने बोलना कम कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, पर सच तो ये था वो बदला नहीं था, बस उसे अपनी शांति को लोगों से ज्यादा जरूरी मान लिया था। और सच कहूं, हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता, कुछ लोग बहुत कुछ समझ जाने के बाद खामोश हो जाते हैं। बस भावें मैं मजाक दे विच रीड किया, पर बहुत सोहना रीड किया। मैं तो तुहानू लिख के भेजना पैना मैं किदा दा रीड किया, ठीक है? एंड मैं खुद कह रहा मैं बहुत सोहना रीड किया। बाकी भेजने वाले भी कमाल दे दोस्त ने सानू, सोनू मलेरकोटला जी तो। एक और मैसेज भेजा सानू चौहान साहब अमृतसर तो, आ कितने टलते ने लिखा दिला शायरे प्रोग्राम के हो सर मोहित रुबल जी, आप फिल्मी अंदाज में शायरी पढ़ रहे हो, मजा ही आ गया। लिखा कि चाहे तुम पूछ लो सुबह से या शाम से, तो पुराने स्टाइल वाले पुराने शायर कितना रीड कर देने कि चाहे तुम पूछ लो सुबह से या शाम से, ये धड़कने चलती हैं बस तेरे नाम से। क्या बात है चौहान साहब। ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਉ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੀਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।

दर्द की याद आ गई हो तो समझ जाना कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये तुम्हारी भी है। अरे क्या बात है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। लो जी वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम असी इत्थे ही ते थैंक यू सो मच जी टू ऑल माय फ्रेंड्स हु सेंड ब्यूटीफुल शायरीज मैसेजेस इन नज़म थ्रू दिस प्रोग्राम, सो थैंक यू सो मच। सो दिस इज मोहित रुबल साइनिंग ऑफ स्पेशली फ्रॉम दिस प्रोग्राम ओनली। वी विल सी यू अराउंड 4 o'clock बिकॉज 3 to 4 तुसीं इंजॉय करोगे रेडियो डॉक्टर साढ़े डेली प्रोग्राम तो। लो जी हूँ इंजॉय कर इस प्रोग्राम का आखिरी गीत, दोबारा मिलेंगे 4 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: थैंक यू मैडम।
1: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं?
2: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है वो जो महीना चल रहा है अभी मिड मई से मिड जुलाई तक का है, इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं। तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। आदमी को खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दौरबल्ले हो जाता है और जो वात है वो बढ़ता है, तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए। तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बताऊँगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएँ पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप वाइट कलर का छाता हो, जो वाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने के वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या वाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो चीज़ें, बाज़ार का जो खाना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूँ भी बढ़ रही है और ये गर्मी

0: जो है जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम, हमारा जो बेस है वो गाँव से है, और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं, शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
1: गर्मियों में समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियाँ बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री से भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा, बाद में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये ज़रूरी है, बीच बीच में पानी पीजिए। नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना के पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, ठंडी चीज़ें, संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं।

0: हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं, जो इस सीज़न में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है, मसाले गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो,
2: ओम शांति।
1: हेलो, नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या,
0: बिल्कुल,
2: तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
0: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी, मई मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है, इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी बॉडी नहीं, जमीन पे भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, जो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गर्म मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आप जो सीजन की चीज़ें हैं जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं, खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत ज़रूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पर कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ासतौर से बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और बोलिए आप क्या चाहते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो,
3: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास मेरा वजन है, ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और वाइट मेरी स्किन है, जैसे अंग्रेजों की होती है ना फॉरनर की
1: जी,
3: तो उस खुद की मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून
1: जी। गुड आफ्टरनून जी,
3: डॉक्टर साहब मेरी
1: हाइट कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब
3: हाइट मेरी 6 फीट।
0: 6 फीट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
3: डॉक्टर साहब मेरे चार सवाल हैं, बड़े सीधे साधे भोले भाले।
0: हाँ बताइए।
3: पहला सवाल तो ये डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरी वाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
0: हाँ बिल्कुल।
3: क्योंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
0: जी हाँ,
3: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास
0: जी हाँ,
3: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी, एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ। अब अगर मैं इनो पीऊँ पानी में मिला के या लिमका पीता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, पर टेम्पोरेरी परमानेंट नहीं।
0: हाँ जी।
3: तो इसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल कि मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने में प्रॉब्लम, मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस। और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पे गर्म हवाएं चलती हैं, तो आयुर्वेदा कंपनी ने आरोग्य नेत्रम अमर नेत्रम दवा निकाली है, तो अगर इसको आंखों में डालें तो इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये 5 सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
0: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती। आपकी एज कितनी है?
1: 48
0: है। और काम क्या करते हैं आप?
1: काम नहीं बताया था इन्होंने, कहा था 48 वर्ष उम्र है,
0: काम
1: 70-75।
0: वर्क क्या करते हैं सर आप?
1: सर लाइन कट गई है। हाँ आप बता दीजिए वैसे ही।
0: अच्छा, तो ये जो है इसके लिए तो वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का अपना पत्थे का प्रयोग सही करें आप, और ऐ पत्ते का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें।

0: गर्मी में बाहर ना जाएं, अंदर रहें, ठंडे स्थान पर जाएं। अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे। तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप थोड़ा सा नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है, लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं। वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की शिकंजी लें, छाछ दही की छाछ बन दही की जो है लस्सी बना कर लें आप। संतरा शूट करता है, संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं आप। ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे, आपको गले के रोगों में फ़ायदा करेगा। शीतली प्राणायाम करें, उससे भी आपको आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम हो लगेगी आपको।
1: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
0: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
1: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
0: देखिए अपना अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
1: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आँखों में भी, गर्मी तो है।
0: तो गर्मी में तो ड्राइनेस होती है, आप उसके
1: लिए क्या करें?
0: गाय का जो है, गाय का प्योर घी जो बाज़ार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ। गर्मियों में भूख को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
0: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। तो वहाँ जो है आपका, अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप, इसके भी डिपेंड करता है वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं, आपका काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी। दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ़ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है। जब पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ज़्यादा होता है वो परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है। पर जिसका भी पेट छाते से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है। केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से वहाँ संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो, और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पथ्य का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पथ्य को छोड़ दो।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
0: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है। बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाज़ार में मिलती हैं, वो ले सकते हैं। बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लौंग भास्कर चूर्ण है, आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है। बाकी ये आपका अदरक के घर में आपके नींबू है और उसमें अजवाइन डालो, और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के, और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उससे।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, यह है, लिखते हैं, डॉक्टर बलजीत दबास और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे, जवान और बुज़ुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए? थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं।
0: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में, कि लोगों को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा। अब इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं है फास्ट फूड में, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, सबको बना बनाया खाना चाहिए, ना आदमी काम करना चाहता है, ना महिलाएं काम करना चाहती, खाना कौन बनाए? तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ। तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का

0: भी उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग दो दो बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग। तो ये तो एक सिस्टम है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि फूड हैबिट जो है रात में भोजन मिल रहा है बंद कर देना चाहिए, रात को 10 बजे के 11 बजे के बाद तक तो कोई होटल कुछ खुला नहीं रहना चाहिए, अभी रात पूरी रात खुले रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं। अभी अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाज़ार से क्यों मंगाते हो, आपको कोई फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर करते हो तभी तो आता है ना खाना, तो आप मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए, आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है आप खुद बनाओ, कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये ज़रूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना।
1: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं हाय गुड हॉट नून रिया फ्रॉम उत्तराखंड, ये लिखती है माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल, वॉक करके आती हूँ इवनिंग में तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए।
0: देखिए वॉक कितने फास्ट करते हैं आप भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं, मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है आप इतना वेट है तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप, तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्किंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप सत्तू लीजिए बहुत अच्छा है ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है तेज़ धूप में बाहर मत जाइए, तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ, आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल सबका बुखार उतर जाएगा, नहीं वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है, हर जो रूल्स है वो है ये कि भाई सुबह उठ के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए आप, अब कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बताइए मेरे को, लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं किस टाइम होता है, फिर उठ के पानी नहीं पीते लोग, एक कप चाय पीते हैं तो यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, जबकि चाय तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो आप सुबह सुबह उठ के 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके बाद आपको दीर्घ शंका होगी, दीर्घ शंका होने के बाद फिर वापस बैठिए और फिर 1 गिलास पानी कम से कम पीजिए, फिर आपको लघु शंका होगी, अब लोगों को दीर्घ शंका क्या होती है लघु शंका ये भी नहीं मालूम होगा, और जब ये समझिए अगर आपको दीर्घ शंका होगी तो आपका पेट साफ हो गया, लघु शंका होगी तो आपका समझो खून साफ हो गया, किडनी काम कर रही सही, तो जब सारे सिस्टम काम करेंगे सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप पहले, और आपके जो दांत हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दांत से ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ खून साफ स्वस्थ रहेंगे आप, सीधा फार्मूला है इसको फॉलो करिए, आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं भाई, तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
1: डॉक्टर साहब जैसे सर्दियों में होता है हमें ठंड लग गई तो नज़ला जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ गर्मी?
0: हीट स्ट्रोक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे ही भट्टी के पास बैठे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पर लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं या आजकल एसी आ गए एसी में रखो उनको, तो इस तरीके कर सकते हैं। तो
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से, सर मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है, सिविल इंजीनियर हैं तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
0: देखिए ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है वो तो क्योंकि काम है उनका प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको दे ना एक छतरी खरीद के लाओ सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो ठीक ठीक हालत में, उसको गीला करें बार बार और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें ऊपर छाता रखें तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरे बाजू का कपड़ा पहने यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है, और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको अच्छी बात है ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें, और उनको बोलो पानी जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते हैं उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
1: तो डॉक्टर साहब कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
0: देखिए पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है। आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
1: जनरल में, अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए।
0: और ये अगर उम्र कम है, बच्चे को थोड़ा कम हो जाए।

0: का ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है, जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो तीन लीटर तो है ही, बच्चे गर्मियों में चार लीटर पानी भी आप इजीली पी सकते हैं। और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी ख़राब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी ख़राब हो जाएगी। तो एक ये है ना, खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए। आजकल लोग बियर पीते हैं, पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया पता नहीं। तो बियर ठंडी रहती है, वो आप दे सकते हैं, वो पी सकते हैं।
1: जी, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो, शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगा कर जाएं, क्या नहीं लगा कर जाएं त्वचा पे, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
2: देखिए, हम तो भी कोई भी क्रीम जो बाज़ार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए कोई भी। सबसे बेस्ट है आप कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, ठीक है। और उसको तेल की उसकी मालिश करो, मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो। उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपको बॉडी कवर

0: होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पे ना पड़े। सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितने भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, लोग जाते हैं कोई कुछ इससे मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे,
0: एलोवेरा, एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग शेविंग करने के लिए बाज़ार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो उससे शेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
1: जी, एलोवेरा का सेवन करेंगे और
0: उसी उसी लगाएंगे बॉडी पे,
1: उसे बॉडी पे
0: पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं,
1: पूरी बॉडी पे लगाएंगे और पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिससे,
0: और लाइट कलर के कपड़े,
1: लाइट कलर के,
0: वाइट बेस्ट है।
1: ओके, और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सोराज बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से। जी डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: जी बताइए क्या प्रश्न है।
2: मेरा प्रश्न ये है जी कि मैं जो है जब सोच जाता हूँ लैट्रिन काली आती है जी, उसका भी कभी उसमें मवाद आता है जी, और भूख कम लगती है जी।
0: भाई खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
2: खाना तो मैं घर का ही खाता
0: हूँ। घर का तो खाते हैं, अगर पालक खाओगे तो लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है ना? तो लैट्रिन काली के बहुत सारे कारण, अगर आयरन की कोई चीज़ें खाओगे तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लैट्रिन काली हो सकती है, ठीक है? और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता ये अलग बात है। भूख आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
2: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
0: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज, सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर। पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे।
2: अच्छा जी,
0: पानी में आप अब गर्मी का मौसम है नींबू डाल कर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना? आधा आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाज़ार का अगर कुछ खा रहे हो अड़ंग दड़ंग तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और बोलिए
1: डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। यह है सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली से।
0: देखिए जो सत्तू आप ले रहे हो जौ का चने का, वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आप पर खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना है तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना? तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाज़ार का खाना छोड़ दीजिए, बाज़ार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा तरबूज खाने से जैसे 2 जगह मौत हुई है।
0: देखिए ऐसा है, सुनिए मेरी बात, आप अगर किसान हैं और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं।
3: अगर तो ये भी खाया जी, बेल में जो इंजेक्शन लगाते हुए को भी पकड़ा मैंने, न्यूज भी देखता हूँ मैं साथ में।
0: पकड़ा ना आपने, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें मत खाइए आप, अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है,
3: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का, ये
0: भैया ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ये देखिए ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे रिलायंस कंपनी है सपोज, एक मिनट, वो खुद अपनी चीज़ें उगा रही है, ठीक है, खुद उगाते, मान लो फसलें उगा रही है, वो तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो जो रेडियो पे जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं, और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला, तो ऐसा मत खाइए उनकी, मत छोटी दुकान से इन रेडियो से मत लीजिए, कोई जो एक अच्छा जो ठैया है ना जहाँ पे लोग पता है कि भाई रिलायंस वाला है मान लो, या कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
1: मतलब
0: बाकी तो ये होता है अगर

0: मान ले कोई पौधा मेडिसिन अगर सांप के बिल के पास बनती पैदा होती है, सांप के बिल के पास पैदा होती है, तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके। ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
1: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुज़ुर्गों को गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए ये बात सही है कि बुज़ुर्ग और बच्चे, ये शरीर का ज़रा नाजुक होता है
1: जी
0: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा, ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो बुज़ुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर, जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुज़ुर्ग अगर पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषा पान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ, आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे तक घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा के बना ले आओ भाई। आज जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुज़ुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा, जाएगा बाज़ार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से। तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
1: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
0: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियां कर दी है गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुज़ुर्ग आदमी कई बार क्या होता है वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है पर होता है भारी, उनका शरीर इतना अलाउड नहीं करता।
1: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएं, टाइम से सोएं, तो अच्छा है। देखिए सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निद्रा, आपको पूरी निद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए। ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें लेंगे। तीसरा है फिर आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कि मतलब कोई सेक्स ही नहीं है खाली, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हों, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। तो लोग एक्चुअल में ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स से जोड़ लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पर कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी बहुत चीज़ों पर कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं। ये आयुर्वेद में इनको उपस्तंभ बोला है, जैसे जैसे स्तंभ होता है उसके जो नीचे लगाते हैं वो उपस्तंभ कहलाता है, यानी पूरा जो छत का वजन जो है उठ लेता है वो।
1: और सर अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
0: देखिए गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है, एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरा वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएँ, और खाना पीना तला भुना ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएँ, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है, इनका सेवन करें, ये ठंडी चीज़ें सारी ये खानी चाहिए सभी को, गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
1: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी जी डॉक्टर, में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूँ कि मेरी एज 40 साल है, हेल्थ हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूँ। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वज़न कम करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ?
1: देखिए, वज़न कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है? मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वज़न घटेगा, ठीक है?
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माय नेम इज़ मुकेश, एज इज 79 ईयर्स, आई एम टेकिंग झंडू पंचारिष्ट, कैन आई यूज़ दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप झंटू पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी, और अभी आपको शूट कर रहा है, तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी रहे हो 3 चम्मच कर दो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, हर एक का। आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भाई आप सबके लिए की फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है। तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत

0: से ऐसे लोग दूध पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है। वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है किसी को, चावल से एलर्जी हो रही है किसी को। तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत लीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता है लीजिए। और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है। अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
0: हाँ, देखिए नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी। और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी भी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ आ जाती है। तो इसलिए ना स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अगर हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी। और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए। ये नहीं खाली हम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, वो तो गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई? गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें भी अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई उसको कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी? तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं, जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए। तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
0: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए। ये तो है भी, ये तो नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है, आस जगह पे बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर बेसी हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं है। तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है और अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: और साथ में अगर हम देखें जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है कई बार नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी है और कौन कौन से करने चाहिए जिससे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें?
0: देखिए प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है। आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस, मतलब इतना ज़्यादा ना करो जिससे आपकी बॉडी पर ओवरलोड पड़े। हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे। तो वाली बात है, प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो। ये नहीं कि भाई आप ठंडे के मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका, और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट कर। टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको। तो इसलिए अपने आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
1: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए? क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे भी प्यास नहीं बुझेगी।
0: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अब बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको। इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है घर में, एसी है, तो पानी ठंडा गर्म में मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
1: सर, और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं। वो लिखते हैं मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियाँ हो जाती हैं, इसका क्या कारण है, हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुँह पर घुमौरियाँ ना हो, इसके बारे में

0: आने का कष्ट करें।
1: देखिए ऐसा होता है, एक आपकी एज कितनी है हम ये जानना चाह रहे हैं।
0: उन्होंने लिखी है उनकी एज जो है 25 वर्ष।
1: बस यंग एज है आपकी
0: जी।
1: तो ये
0: है जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
1: जोगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है। और आम की तासीर वैसे गर्म है, तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे। पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ पर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरी आपको नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में। अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे 5 बजे और 6 बजे अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ, ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरियाँ आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर जिला मेरठ से।
0: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: सर प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं, डॉक्टर साहब को भी हमारा सलाम।
1: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में उसकी आँखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
1: देखिए ठंडे पानी के छींटे मारी आंखों पे उनको, आंखें बंद करा के ऊपर से मारी ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आंखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए, और धूप में उसको जाने से बचाइए आप, और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें बस।
2: और जैसे आंखों में कोई आयुर्वेदिक की कोई ऐसी दवा है डालने की?
1: डालने के लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है, एक आइसोटोन आती है, वो डाल सकते हैं।
2: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
1: धन्यवाद।
2: जितने भी आप हमारे साथी सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें, और हम भी सुबह उठ के पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर, और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी
0: जी,
2: अच्छा गुजरता है
0: जी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा, तो एक बार संक्षिप्त में, मैं चलने का समय हो गया है लेकिन एक बार जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए।
1: देखिए आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर उक्षपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का, तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी चीज़ में कुछ भी मिला सकता है आपको, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या। तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज़ को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगी नहीं आप, ठीक है। उसमें वही है, हम पहले मानते हैं, हमने बताया पहले भी, सकारात्मक सोच रखो, उसके बाद में अपना दांत ठीक रखो, और जैसे दांत सही तो पेट सही, और पेट सही तो सेहत सही, सीधा फार्मूला है। फिर आपका पेट साफ़ होना चाहिए, फिर आपका खून भी साफ़ होना चाहिए, उसके लिए आपका दीर्घ संका पेट साफ से लघु संका खून साफ करते, बार बार पेशाब आता है आपको तो साफ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है किसी को, अब खाना उठपटांग कितने मसाले, उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी ख़राब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, और गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा करती है, गॉल ब्लड स्टोन बन रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो सब गैस की मेहरबानी से हो रहे हैं। जहाँ गैस जाएगी अपना काम, गैस मतलब वायु, और ये गर्मियों में वायु बढ़ती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
0: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं।

0: हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है। आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज़ क्या करें।
1: देखिए, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गर्म मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गर्म रहता है। ठीक है, तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
0: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान लोगों को दूं और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
0: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@delhi.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। ये आकाशवाणी का
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागने।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो सीमा जी, फिर आज क्या बेचेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप हमें जो बस में ना, जो हमें वो दाल चना या चाय या फिर कुछ ऐसी
0: हाँ,
1: चीज़ें,
0: चाय चाय पकोड़े,
1: चाय पकोड़े, चलो फिर आ जाओ, फिर चाय पकोड़े।
0: चाय चाय बड़े पकड़े पकड़े पकड़े, चाय लो चाय लो, चाय बड़े पकड़े पकड़े, चाय।
1: अभी अभी जो मैडम सीमा है, जो इंग्लिश सॉरी म्यूजिक के टीचर है, अभी आपके स्टूडेंट अगर आपको सुन ले तो क्या कहेंगे कि हमारी मैडम ने रेडियो पे चाय भेज रही थी कल। चलो बहुत ही शुक्रिया, बहुत
0: जैसे मोदी,
1: जी जी क्या कह रहे हैं
0: नहीं मैंने कहा जैसे कई बार लोग मोदी जी को बोल देते हैं ना
1: आप? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। सीमा जी,
0: चाय वाला।
1: कौन सा
0: ओके
1: गाना,
0: जी
1: कौन सा सुनेंगे वैसे आप?
0: गाना यही सुना दो, लग जाए गले।
1: चलो ठीक है, ये वाला, या मैं किसी और दोस्त को भी कॉल उठाऊंगा तो वो जो वो बोल देगा
0: ठीक
1: वो
0: है,
1: उठा
0: ठीक
1: दूंगा।
0: है,
1: ठीक है,
0: ओके
1: थैंक यू सो
0: ओके
1: मच जी। सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार आप प्रोग्राम में जुड़े हो, पहली बार ही मोहित रूबल से बात कर लिया आपने, सो और क्या हो सकता है। ओके जी, सो एक और कॉल चुक लेने जी। हेलो,
0: कभी शिकवा करते हैं,
1: हाँ,
0: कभी शिकायत करते हैं,
1: वाह वाह वाह,
0: ये अवकाश।

0: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच जी रामलो भाई जी। अरे
1: जागने
0: बाबा क्या बात, पूरे सोर लास्ट वाले भी ये करके तुसी लाइन है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रामलो भाई जी, बड़ा चंगा लगा तुहाडे नाल गलबात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। सो लो जी दोस्तों, शाम दे पूरे 4:47 सॉरी 57 मिनट जिहड़े ने हो चुके ने, ते प्रोग्राम विच मैनू हुण तुसी इजाजत दो, क्योंकि अगले जिहड़े दोस्त ने 5 बजे जिहड़े युवाणी प्रोग्राम करनगे, ओह दोस्त कह लो मेरे स्टूडेंट कह लो, ओह जिहड़े ने ओह पहुँच चुके ने, ते ओह तुसी उहनां नाल चंगी तर्हां प्रोग्राम इंजॉय करोगे। लो जी फिलहाल इंजॉय करो इस प्रोग्राम दा आखरी गीत। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिहड़ा ने प्रोग्राम दे विच फोन मिलाया, ते बड़े अलग अलग तरह के होके लाए, प्रोग्राम नूं बहुत रंगीन बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 6:01 हो चुके हैं, FM रेनबो ते मैं एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं जी। जी दोस्तों, शाम के हम 6 बज चुके हैं, मैं लेके हाजिर हो चुका जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी जी। इस प्रोग्राम में तुसी एंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रूपा के नाल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यारे एक बढ़िया जी एनर्जेटिक गीत के नाल।

यू सो एंजॉय कर रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी। वैसे अपन ना बहुत सारिया मोटिवेशन की गल्ला करते हैं, पर कई बार ना सानू जिहड़ी चीज़ां साढ़े आले दुआले होंदियां आपां उहदे लई ना शुक्रिया नहीं कर रहे होंदे उस परमात्मा दा, उस खुदा दा, उस वाहेगुरू दा, उस राम दा, उस गॉड दा, कि भई अगर मेरा भरा है मेरे को, मेरी भैन है, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, सो बी थैंकफुल टू यू नो इन्हां रिश्तियां दे लई भी। बिकॉज़ हुंदा की है, जिन्हां लोकां को नहीं है, एक प्यासे नूं पता हुंदा कि भई पानी दी कीमत की है, पानी उहदे लई किन्नी कि जरूरी है। असीं तां बड़े आराम नाल साफ पानी पीने आं, पर तुसीं अगर ऐसे शहर, एक ऐसे इलाके, एक ऐसे कंट्री, ऐसे देश चले जाओ जिथे तक देखो कि वह बड़ा गंदा पानी, काला पानी पीण नूं मजबूर हो जाता है, पर असी जिथे इन्ना साफ पानी भी है कि असी थोड़ा पी के सारा रोड़ दिंदे आं। सो निक्की निक्की चीज़ दे जदों आपां यू नो ग्रेटफुल होवांगे, उहदी कदर करांगे, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, जिंदगी जिंदाबाद। एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। एंड इस प्रोग्राम नू तुसी इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। समा हो चुका है शाम के 6:31। तो दोस्तों गल इदां है कि अगर तुसी ना मान लो किसी भी कारण तो है ना खुश हो, बड़े खुश हो एंड तुसी हर एक नाल बड़े हस के गलबात कर रहे हो, कोई लंघ रहा उसनों बड़े मिठे जी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब बुला रहे हो, तो कोई होर लंघ रहा फिर उन्होंने भी बड़ा समाइल पास कर रहे हो, तो कोई तुहानू आ के ना पूछ लेगा यार बड़ा खुश हो कि गल कर रहे हैं की गल हुई। नहीं, इत्थे तां पहला मैं सवाल पूछना चाहवागा कि जरूरी है कोई गल होएगी तां ही तुसी खुश होवोगे? तुसी वैसे भी तो खुश हो सकते हो, क्योंकि असी ना एक धारणा जी बना ली, एक माइंड सैटअप बना लिया कि बई नहीं कोई गल होई कि खुशी वाली गल होएगी तो मैं हसांगा, नहीं तो मैं जी मैं मूँह अपना ना सड़ियल ही रखांगा। नहीं नहीं, हर बात में नहीं, ऐसा नहीं करन दी लोड़। तुसी खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि यह गल मैं बड़ी बारी आख दवा कि हैप्पीनैस इज अ चॉइस। तुसी जिन्ना खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश रहोगे या दूजे नूं खुश रखने की कोशिश करोगे, तो यानी कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग, राइट? तो बस फिर कुदरत भी तुहाडे लई मेहरबान होएगी। तुसी चंगा चंगा मैनीफेस्ट कर रहे हो, चंगी चंगी स्माइल कर रहे हो, तो वो सेम एनर्जीज जिहड़ियां ने, पॉजिटिव एनर्जीज जिहड़ियां ने, वो तुहानूं वापस आउणगियां। मुश्किल

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम लव यू जिंदगी। क्लब प्रोग्राम ने एंजॉय करना, जिंदगी भी एंजॉय करनी है, जो कि अज मैं पूरे प्रोग्राम दे विच गल कर रहे हैं कि असी एक तो अपने आप नूं हमेशा मोटिवेटेड रखिए, खुश रखिए, तो दूजे ने भी खुश करने की कोशिश करिए। वैसे तो इस प्रोग्राम दे विच असी कोई फोन कॉल या मैसेज नहीं लेंदे, पर जिवें कि मैं गाने तो पहला मैं जिक्र कर रहा सीगा कि आपां ना हर चीज़ दे लई ना शुक्रिया करिए उस परमात्मा दा, आपां ग्रेटफुल होइए कि साडे कोल आ चीज़ है, असी शुक्रिया करिए कि साडे कोल आ चीज़ है। सो जेकर तुसीं भी प्रोग्राम सुन रहे हो तो बस मेरे को आइडिया हो जूगा कि किन्ने क दोस्त जिहड़े ने उह प्रोग्राम वाकई सुन रहे ने ते वाकई इस गल्लां ते विश्वास करदे ने। सो जो तां वाकई इस गल्लां ते विश्वास करदे ने कि सानूं निक्की निक्की की चीज़ दा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस परमात्मा का, क्योंकि हो सकता है किसी होर को चीज़ भी ना हो, किसी को हाथ ना हो, किसी को पैर ना हो, किसी को पैसे ना हो,

0: चिंता ना कर साहबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलांच तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ भुला देवे।

पर्ल डी कैस्ट्रो, विसल डी कैस्ट्रो लिखा है कि सॉन्ग तेरी गलियों में ना रखेंगे। फिल्म का नाम है हवस, सिंगर ने मोहम्मद रफ़ी, तो फिल्म आई सी 1974 दे विच। प्ले करन जा रहे हैं इन्हां दी फरमाइश।

कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खोकर ऐसे हमें देखते हैं कि खुद ही बेवफा निकले।

वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में ना आने का, कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो मियाँ, दुश्मन नहीं मिलता यहाँ जमाने का, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक, समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का।